0: Jungle Deep Scent 3-in-1 Perfume Like Fragrance. रंग बहार रंग बहार
1: वर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि
0: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ वर्जर पेंट्स

0: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइट फ्रेग्रेंस।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
1: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ। बर्जर पेंट

0: पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस प्राली न्युरो पोखराले विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
1: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलासन, डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
2: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, डाक्टर प्रवीण थापा, डाक्टर सुभाष गुरुङ,
1: जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्मया पोन,
1: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ,
2: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेरचन, फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी,
1: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल,
0: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला रोग प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर प्रकाश छेत्री, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर जुजु राज श्रेष्ठ, नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मानकाजी थापा मगर, प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पीयूष गिरी, छाला विज्ञान भेनेरियोलोजी तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले, नाक कान घाँटी तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास गुरुङ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ, कन्सल्टेन्ट एनेस्थोसियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, डाक्टर विशाल गुरुङ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुमोल पौडेल,
3: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको, टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलिसिस सेवा र आँखा उपचार सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
1: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एण्ड एलआई साइन्सेस प्राली, पोखरा 9 न्यू रोड, फोन 061 590 162, 590 163।

0: গুগল। ভাটসালিয়া পোখরা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখরা। ফার্টিলিটি হোপলাইন 01-597-0611।
1: बाजे देखि नातीसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला पूर्वाह्नको 10 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि
0: घर रंगाओ खुशी बनाओ
1: उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ष पेन्स
2: जीवन में ढुक्का सुरक्षित।

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ष पेंट

0: पर्यटक नगरी पोखरा में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्रणाली सृजनाचोक पोखरा विभिन्न किसिम का विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा को उपचार लिया जानकारी कराद
1: हमारा सेवा
0: हार्ट जोड़ने नशा तथा मेरुदंड रोग
1: जनरल सर्जरी सब प्रकार का ऑपरेशन सेवा
0: मृगौला तथा मूत्र रोग यूरो सर्जरी
1: पेट छाती मुटु थायराइड तथा मधुमेह रोग
0: न्यूरो सर्जरी सेवा
1: बाल रोग
0: नाक कान तथा घाटी रोग
1: मानसिक तथा स्नायु रोग
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिफ्राइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाटी रोग को अपरेशन
1: 24 घंटा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
1: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली पोखरा आर सृजना चोक कास्की
0: फोन 061-572-648-572-849

0: कानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुलेर जियो।
1: सर्वाधिक बिक्री हुने ह्युंडई गाड़ी को शोरूम पोखरामा अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा पोखरा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स सबै को सेवा सहित एलआई मोटर्स। विस्तृत जानकारी को लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा फोन नंबर 0165274256537526।

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होप लाइन 01-597-06-11
1: ओहो नाचर बे कति छाब डिजाइन बे मारे गना खिनानी खनी तोला
2: खनाई दिवा नाचर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाती दुकान महेंद्र पुलारी तोला
1: ए नई छाबा मार दुकान पो मोना नई प्रेसोलाई नी चार चूरा रैया औठी हमेला झोका टस सिक्री हार तान चनाई तो हो नी जगह मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी मार चुअल तुई बिसेनारी बेल्ले छाबा कोपिम ओछे
2: हजुर किने झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी मिशा वा चुबल तुई बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिकी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जगह मात्र आँगी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडेरे मुहै आसुम ल्यादो
2: तमुताई रबा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्ने यामो
1: तोय मिल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-5508-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छताइरा त तान नि बिन्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाकोट
4: 93.4 Where's that digital?

0: दिव्य नयन आँखा घर क्लिनिक प्राली
1: इस 2083 साल को बड़ा दशैं तथा दीपावली को पावन अवसर में दिव्य नयन आँखा घर को असोज र कार्तिक दुई महीना भरी बम्पर अफर टिकट में 50% छूट चश्मा फ्रेम में 25% छूट र आँखा परीक्षण तथा शल्यक्रिया में 30% छूट
0: नेपाल को तिलगंगा आँखा अस्पताल र अमेरिका को मोराइन आई सेंटर बाट प्रशिक्षण तथा कार्य अनुभव प्राप्त गरी 16 वर्ष को कार्यावधि में 80,000 बड़ी बिरामी को मोती बिंदु को शल्यक्रिया गरिसकेका वरिष्ठ फेको सर्जन तथा कोर्निया कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनिल गुरुङ द्वारा अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी उपचार गरिने जानकारी गराउँदछौ
1: हाम्रा सेवाहरू कोर्निया सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच तथा उपचारका साथै कोर्निया प्रत्यारोपण आँखाको लेजर सर्जरी सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श दृष्टि विशेषज्ञ द्वारा बाल बालिकाको चश्मा जाँच तथा भिजन थेरापी जलबिन्दु र आँखाको पर्दा सम्बन्धी जाँच उपचार फेको मेसिन द्वारा बिना सुई मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया र आँखामा मासु पलाएको शल्यक्रिया क्लिनिक समय आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्म स्थान न्यू रोड भागवटनी पारी एभरेस बैंक नजिक फोन 577-007 97-623-36-816

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजीव
1: घर होस या ऑफिस होटल होस या रेस्टोरेंट छिटो र भरपर्दो इंटरनेट सेवा पोखरा इंटरनेट पोखरा को ब्रांड 25 वर्ष को विश्वास गति अपार 1 GBPS सम्म का पैकेज को बहार स्ट्रीमिंग गेमिंग काम होस् या रमाइलो जहाँ सुके जाऊ कनेक्शन में कुने गड़बड़ी छैन ढिलो पोखरा इंटरनेट सधैं तपाईको साथमा हिजो आज भोलि हामी छौ तपाईको बाटोमा छिटो भरपर्दो सुलभ र सहज पोखरा इंटरनेट तपाईको पहिलो रोजाई

0: California. Extreme energy drink.
1: होम केयर सेवा, होम केयर सेवा।
2: हेलो होम केयर, डाक्टर नर्स केयर गिवर को सेवा आयो घर घर।
1: के हजुर को घर में वृद्ध आमा बुबा, बाजे बजे, दीर्घकालीन रोग बीमारी वा अपाङ्गता भएका परिवार का सदस्य लाई विशेष हेरचाह चाहिन्छ र आफ्नो पेशा व्यवसाय र बाध्यताले परिवारजनलाई पर्याप्त विशेष हेरचाह र समय दिन मिलिरहेको छैन।
2: हाम्रा दक्ष एवं अनुभवी नर्स केयर गिवर र डाक्टरहरूले घरैमा प्रदान गर्ने विविध स्वास्थ्य सेवाले सेवाग्राही र परिवारजनलाई शान्ति र निश्चिन्तता प्रदान गर्दछ।
1: हाम्रा सेवा वृद्ध बुबा आमा को नर्सिंग हेरचाह,
2: अल्पकालीन दीर्घकालीन नर्सिंग हेरचाह,
1: सुत्केरी नवजात शिशु को हेरचाह,
2: क्यान्सर सर्जरी राहतकारी हेरचाह,
1: केयर गिवर हेरचाहकर्ता घरेलु सेवा,
2: डाक्टर ल्याब सेवा,
1: औषधि डेलिभरी सेवा,
2: उपकरण बहाल सेवा, तपाईको निरन्तर साथ र सेवामा हेलो होम केयर परिवार जस्तै हेरचाहमा। हेलो होम केयर सिलेढुङ्गा पोखरा निभा गल्ली र बुढी बजार, फोन 061411777, मोबाइल 98560992 77।
3: रंग बहार, रंग बहार।
4: वर्ज संगे उपहारे उपहार। बम्पर मा यामाहा रेजियार।
3: वर्ज पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
4: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाओ, खुशी बढाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
3: वर्ज पेंट।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो।
1: संस्कृति चिनाउन दौड़ौ, इतिहास सम्झाउन दौड़ौ, साहस जगाउन दौड़ौ, प्रकृति जोगाउन दौड़ौ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको

0: भूतपूर्व खेलाड़ी मन पोखरा,
1: विशेष सहयोग
0: श्री नेपाली सेना पश्चिम पृथना हेडक्वार्टर विजयपुर। विस्तृत जानकारी का लगी फोन 061588716, 98560884, वेबसाइट www.pokharamarathon.org, फेसबुक आईडी पोखरा मैराथन मेन पेज।

0: বাতসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখারা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11।
1: হ্যালো, কি ছ তেরো খবর?
2: ঠিক রিয়াল, সঞ্জয় ছস?
1: সঞ্জয় ছু। অব ভিসা লাগে পছি তো পার্টি দিনে হলা নি?
2: পার্টি তো দিন হুন্থ্যো, কিনমেল গর্ন বাকি নাই ছ ইয়ার।
1: मैले त सबै किनमेल गरिसके, अब बेडसिट, सिरक र दुई चार थान टप्स कुर्ती किन्नु छ।
2: मैले पनि किन्नु छ के, सँगै किनौ न।
1: तिमी जाने अस्ट्रेलिया, म क्यानाडा यार।
2: सबै ठाउँको बेडसाइज अनुसारको बेडसिट पाउने ठाउँ छ क्या किनमेल संसार, हो त्यही जाम न।
1: ए मैले पनि खुब सुनेको छु किनमेल संसारको बारे, ब्रान्डेड ब्रान्डेड तन्न पाइन्छ त्यहाँ।
3: विदेश लैजान तथा पठाउनका लागि भ्याकुम प्याक गरिन्छ, साथै भ्याकुम ब्याग पनि उपलब्ध छ। जुनसुकै ब्रान्डका आकर्षक तन्ना सेट, सिरानी, कुशन, सिरक, ब्ल्याङ्केट, ब्ल्याङ्केट कभर, बेड कभर, दिवान सेट, डोर सेट, समर ब्ल्याङ्केट, कुशन कभर, टावल, कुर्ता, टप्स पाइने एक मात्र ठाउँ किनमेल संसार, गैरापाटन, पोखरा। प्राइम सहकारीको भवन, कुमुदिनी होम्स स्कुलदेखि 50 मिटर पश्चिम। मोबाइल 9856031412, 9864667887।
4: तन्ना आजै फेरि हाल्नुहोस्।

0: पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
2: रंग बहार रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
2: बर्जर पेंट।
4: पर्यटकीय नगरी पोखरामा मेट्रो सिटी हस्पिटल प्रणाली सृजना चोक पोखराले विभिन्न किसिमका विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरूको उपचार ल्याएको जानकारी गराउँदछौ।
5: हाम्रा सेवाहरू
4: हार्ट जोड्ने नसा तथा मेरुदण्ड रोग
5: जनरल सर्जरी सबै प्रकारका अपरेशन सेवा
4: मृगौला तथा मूत्र रोग युरो सर्जरी
5: पेट छाती मुटु थाइरोइड तथा मधुमेह रोग
4: न्युरो सर्जरी सेवा
5: बाल रोग
4: नाक कान तथा घाँटी रोग
5: मानसिक तथा स्नायु रोग
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग
5: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
4: नेत्र रोग
5: दाँत तथा मुख रोग
4: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिब्राइडर प्रविधिद्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन
5: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
4: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
5: डिजिटल एक्सरे
4: सिटी स्क्यान सेवा
5: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
4: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
5: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
4: केमोथेरापी
5: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
4: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
5: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली ओखुरा 8 सृजना चोक कास्की
4: फोन 061 572 648 572 849।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

0: रेडियो अन्नपूर्ण 93.4।
1: भगवान आदित्य की उपासना से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का अंत हो जाता है, शारीरिक रोगों का शमन होता है और अनेक प्रकार के दुख और शोक से प्राणी को मुक्ति मिलती है। भगवान आदित्य को तीनों लोकों और 14 भवन का स्वामी कहा जाता है।

हो। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही भगवान सूर्य आदित्य कहलाए। इनके 12 स्वरूपों का वर्णन मिलता है जो क्रमशः इस प्रकार है। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भगवान, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण तथा मित्र। भगवान सूर्य अपने पहले स्वरूप से देवलोक में शासन करते हैं, दूसरे से प्रजा की रचना करते हैं, तीसरे से मेघों की व्यवस्था, चौथे से जगत पालन, पांचवें से औषधियों को रोगनाशक शक्ति देते हैं, छठे से प्राणों का नियंत्रण, सातवें से धरती की व्यवस्था, आठवें से अग्नि पर नियंत्रण, नवें से प्रायः अवतार लेते हैं, दसवें से सुख वैभव देते हैं, ग्यारहवें से जल में जीवनी शक्ति भरते हैं, बारहवें से चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित रहते हैं, ऐसा शास्त्र मत है। इनके साथ ऋषि, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सर्प प्रत्येक मास में अलग अलग इनके साथ रहते हैं। ऋषि लोग स्तुति करते हैं, अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हैं, गंधर्व संगीत अलापते हैं, नाग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की बागडोर संभालते हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं। इसी से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल थल नभ तीनों में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। मौसम, प्राणी, प्रकृति, वनस्पति सब सूर्य पर ही आधारित लक्षित होते हैं। भगवान सूर्य 12 महीनों में किस प्रकार विद्यमान रहते हैं, शास्त्रों में वो इस प्रकार कहा गया है। चैत्र मास में भगवान सूर्य धाता स्वरूप है। इस समय अपनी सभी किरणों में भी प्रकाशित होते हैं। इनके साथ पुलत्स्य ऋषि, वासुकी नाग, रथमृत नामक यक्ष, ऋतुस्थला नामक अप्सरा, हेति नामक राक्षस तथा तुम्बरु नामक गंधर्व रहते हैं। वैशाख के महीने में सूर्य अर्यमा स्वरूप होते हैं, जो अपनी 300 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, नारद नामक गंधर्व, पुंजेस्वत्थला नामक अप्सरा, प्रेहित राक्षस तथा कच्छवीर नाग रहते हैं। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य मित्र स्वरूप होते हैं, जो अपनी 200 किरणों से चमकते हैं। इस मास में इनके साथ आत्रि ऋषि, रथस्वन यक्ष, हाहा गंधर्व, मेनका अप्सरा, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस आदि रहते हैं। अषाढ़ में सूर्य वरुण रूप होते हैं। 500 किरणों से सुसज्जित वशिष्ठ ऋषि, हुहु नामक गंधर्व, सहजन्या अप्सरा, नागराज तथा रथ नामक राक्षस और रथचित्र नाम के यक्ष के साथ होते हैं।

श्रावण मास में सूर्य इंद्र स्वरूप होते हैं, अपनी 200 किरणों से प्रकाशित होते हैं। इस मास में इनके साथ ऋषि अंगिरा, विश्वासु नामक गंधर्व, प्रग्लेचा अप्सरा, एलापुत्र नामक सर्प, स्थ्योत्य नामक यक्ष तथा सर्प नामक राक्षस होते हैं। भाद्रपद महीने में सूर्य विवस्वान स्वरूप हो जाते हैं, अपनी 300 किरणों के साथ चमकते हैं। इनके साथ ऋषि भृगु, उग्रसेन गंधर्व, अनुम्लोचा अप्सरा, आपूरण यक्ष, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस होते हैं। अश्विनी मास में इनका स्वरूप पूषा होता है, अपनी 200 किरणों से ही चमकते हैं। इनके साथ गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुषेण गंधर्व, धनंजय नाग और वात नामक राक्षस होते हैं। कार्तिक में सूर्य पर्जन्य स्वरूप होते हैं, अपनी 1100 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ भरद्वाज ऋषि, विश्वाची अप्सरा, विश्वावसु गंधर्व, सेनजित यक्ष, ऐरावत सर्प तथा अन्य राक्षस होते हैं।

रखो। मार्ग शीर्ष में सूर्य अंशमान होते हैं जो अपनी 1500 रश्मियों के साथ चमकते हैं। कश्यप ऋषि, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व, तारशीर्यक्ष, महापद्म सर्प तथा विद्युत नामक राक्षस होता है। पौष मास में सूर्य का स्वरूप भगवान का होता है। कृतु ऋषि, पूर्वचिंती अप्सरा, अरणायु गंधर्व, ककोटिक सर्प, अरिष्टनेम यक्ष, स्फूर्ज राक्षस इनके साथ में होते हैं। माघ में सूर्य त्वष्टा स्वरूपी होते हैं, अपनी 1500 किरणों से चमकते हैं। जमदग्नि ऋषि, तिलोत्तमा अप्सरा, कंबला सर्प, ऋतुजित यक्ष, ब्रह्मोपेत राक्षस तथा धृतराष्ट्र गंधर्व होते हैं। फाल्गुन मास में सूर्य भगवान साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं। इनके साथ विश्वामित्र ऋषि, रंभा अप्सरा, अश्वतर नामक सर्प, सूर्यवचा नामक गंधर्व, सत्यजित राक्षस तथा यज्ञोपेत राक्षस होते हैं।